0: चाचू हमारी को आज्ञा ले लो।
1: तुम्हारी आज्ञा लेनी पड़ेगी।
2: हमारी
0: और का हमारी आज्ञा बिना तो यहाँ से मां काम ना कर सको।
2: हाँ तो कभी तुमने सच बोला।
1: अरे सच्ची वो पर

आय आय लो तूफान आय के जाबी रे हेसे हेसे जाबो बेसे मदीना नगरी दरी आय आय लो तूफान आय के जाबी रे